0: घड़ी मिला लीजिए, इस वक्त सुबह के ठीक 5 बजे हैं।
1: आपकी खट्टी मीठी यादों में आपके संग

प्रभात आराधना हर सुबह 5 से 6 बजे तक भक्ति के मधुर सुरों में कीजिए ईश्वर की आराधना रेडियो मॉरिशस पर।

0: ईश्वर की आराधना के इन मधुर सुरों के साथ प्रभात आराधना का ये सफर यही समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे सुबह 5 बजे भक्ति के नए गीतों के साथ रेडियो मॉरिशस पर।
1: आइए सुनिए मॉरिशस आर्य रविवेद प्रचारिणी सभा द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम जागृति।
2: के दौरान देश में ऊर्जा की मांगें गर्मियों की तुलना में लगभग 200 मेगावाट कम होती हैं, फिर भी जागरूकता पर बल दिया जा रहा है, खासकर मौजूदा जियोपॉलिटिकल अस्थिरता के कारण ईंधन की आपूर्ति में आ रही बाधाओं को ध्यान में रखते हुए। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में, उत्तरी चीन में कोयले की एक खान में हुए धमाके में कम से कम 82 लोगों की मौत हुई है और कई अन्य लापता बताए जा रहे हैं। ये पिछले 2009 से पेश आया सबसे बदतर गैस धमाका है। राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कहा कि लापता हुए लोगों की तलाश के लिए हर मुमकिन प्रयास किए जा रहे हैं। खदान के अंदर इंफ्रारेड कैमरे और रोबोट्स भेजे गए हैं। आखिर में स्थानीय मौसम का हाल। आम हालत, मॉरिशस के लिए आज सुबह ऊंची लहरों की चेतावनी जारी की गई है जो दिन के 12 बजे तक बरकरार रहेगी। मस्कारेंस के दक्षिण में पाए जाने वाले एक एंटीसाइक्लोन के कारण हमारे इलाके पर सामान्य से ठंड और तेज हवाएं चल रही हैं और उधर कुछ अस्थिर बादलों का असर भी हमारे इलाके पर पड़ रहा है। अगले 24 घंटों के लिए अनुमान, आज सुबह के दौरान रह रहकर बारिश होगी कुछ इलाकों, खासकर पूर्व दक्षिण और सेंट्रल प्लाटू वाले इलाकों पर रह रहकर बारिश तेज हो सकती है और ऊंचाइयों पर कोहरा छाया रहेगा। आज दोपहर बाद और रात के दौरान भी खासकर ऊंचाई वाले इलाकों पर बारिश जारी रह सकती है। हवा पूर्व दक्षिण पूर्व की तरफ से 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी, जिसके झोंके कुछ जगहों पर 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकते हैं। प्रवाल रेखा के परे समंदर खराब रहेगा। दक्षिणी समंदर में 4 मीटर तक की ऊंची लहरें उठेंगी, जिनका असर पश्चिमी और दक्षिणी लगूनों तथा तटीय इलाकों पर भी पड़ सकता है। इस कारण से मछुआरों और समुद्री गतिविधियों में संलग्न लोगों तथा आम जनता से समंदर में न निकलने की सलाह दी जाती है और इन लगूनों में भी सावधानी बरतने की मांग की जा रही है। जबकि दोपहर बाद से समंदर की स्थिति बेहतर होने लगेगी। तापमान सेंट्रल प्लेटू पर न्यूनतम 17 से 19, अधिकतम 22 से 24 डिग्री सेल्सियस, साहिली इलाकों पर न्यूनतम 21 से 23, अधिकतम 27 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। सुबह 6:35 पर सूर्योदय, शाम को 5:38 पर सूर्यास्त होगा।
3: Center 95.

0: अल्लाह के नज़दीक सबसे अजीम दिन यौमुल खर यानी कुर्बानी का दिन है। बहवाला अबू दाऊद। सनन इब्न माजा की रवायत है, हज़रत अबू हुरैरा रदियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स को कुर्बानी की वसअत हो और वो कुर्बानी न करे तो वो हमारी ईदगाह के करीब न फटके। कुर्बानी करने वाले को कुर्बानी के जानवर के हर बाल के बदले में एक नेकी मिलती है। बहवाला तिर्मिज़ी शरीफ। सामिन कराम, ज़िलहिज्जा के मौके पर जामा मस्जिद पोटलवी की जानिब से ये बयान समात फरमाएं मुफ्ती मोहम्मद इसहाक़ कादरी दामत बरकातुहुमुल आलिया की ज़बानी।
1: नहमदुल्लाह

0: सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये क़ुरबानी क्या है? फरमाया कि काल सुन्नत अबीकुम इब्राहीम, कि ये तुम्हारे वालिद गिरामी सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। तो अर्ज़ की कालू फमालना यफ़ी, हाँ, कि हमारे लिए इस क़ुरबानियों इन क़ुरबानियों में क्या है, क्या सवाब है, क्या इनाम है? قال بكل شعرة حسنة, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जानवर के हर बाल के बदले नेकी है। अब जाहिर है कि छोटा से छोटा जानवर भी हो तो उसके बाल हज़ारों में नहीं लाखों में होते हैं, तो ये नेकी एक बाल के हिसाब से अगर हम लें तो फिर वो लाखों में नेकियां इंसान को जानवर अल्लाह की राह में क़ुरबान करने से मिलती हैं। क़ुरबानी दर हकीक़त सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम और सैयदना इस्माईल अलैहिस्सलाम की यादगार है। क़ुरान करीम फ़ुरक़ान हमीद ने इसको बहुत तफसील से बयान किया है। एक अजीम बाप सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने इकलौते और चहीते बेटे को अल्लाह की राह में क़ुरबान करने का फ़ैसला किया और अपनी पूरी कोशिश भी सर्फ कर दी और बेटे ने भी अपने बाप के सामने अपने बाप के हुक्म के सामने जो दर हकीकत अल्लाह का हुक्म था सरे तस्लीम खम किया। इस फैसले के आगे अपने सरे अनवर को झुका दिया और बेचूनू चरा अपने आप को क़ुरबान होने के लिए पेश किया। अल्लाह पाक ने इस अजीम बाप और अजीम बेटे की इस निराली इताअत और फरमान बरदारी को बहुत पसंद किया, इतना पसंद किया, इतना पसंद किया कि क़ियामत तक आने वाले अहले ईमान और अहले इस्लाम को ये कमांड दिया कि वो इस इताअत का अमली नमूना जानवर और जानवर की क़ुरबानी की सूरत में पेश करें। चुनांचे ये क़ुरबानी उस अजीम क़ुरबानी की याद दिलाती है जो एक लाजवाल दास्तान मोहब्बत है और एक पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल है। अल्लाह पाक हमें खुशी खुशी अल्लाह की राह में क़ुरबानी की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्ला अल-बला।
1: अल्लाह पाक हम सबको इस बयान में सिखाई गई नेक बातों पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। बेशक हमारी नमाज, हमारी क़ुरबानी और सारी इबादत और हमारी ज़िंदगी, हमारी मौत तमाम जहानों के परवरदिगार अल्लाह ही के लिए है। तमाम तर

ज़िलहिज्जा के 10 दिन दुनिया के सबसे अफजल अय्याम हैं, बहवाला सही अल जामे। सनन इब्न माजा की रवायत है, जो शख्स बैतुल्लाह का तवाफ़ करे और 2 रकत नमाज पढ़े, उसका ये अमल एक इंसान आज़ाद करने की तरह है। मसनद अहमद की रवायत है, हज मबरूर यानी कबूल हज की जज़ा जन्नत के सिवा कुछ नहीं, बहवाला मसनद अहमद।

रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ज़िलहिज्जा के 10 दिनों में इब्तदाई 9 दिनों में से हर दिन के रोज़े का सवाब 1 साल के रोज़े के बराबर है। बहवाला तिर्मिज़ी शरीफ। ऐ लोगों के परवरदिगार, बीमारियों को ख़त्म कर दे और ऐसी शिफा अता फरमाए जो बीमारी का नामो निशान मिटा दे, क्योंकि शिफा देने वाला आप हैं और आपके शिफा देने के बग़ैर कोई शिफा नहीं। आमीन या रब्बल आलमीन। सामईन कराम, उम्मीद है आज का ये प्रोग्राम आपको पसंद आया। सवाल खैर प्रोग्राम का वक्त यहीं पर ख़त्म होने जा रहा है। तकनीकी मदद के लिए अंजू का शुक्रिया। अपनी मेज़बान अबिनाज जान अली को इजाज़त दे। खुदा हाफिज़। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।

We got more hits for you, so stay tuned.

भक्तों 10:51 हो चुके हैं और आप सुन रहे हैं भक्ति में शक्ति। मैं हूं आपके साथ पूनम, RM3 रेडियो मनोरंजन पर आप ही के प्रोग्राम में भक्ति में शक्ति में। दोस्तों, गणपति बप्पा के बारे में एक बात जो मुझे बहुत ही प्यारी लगती है वो है कि वो माँ पार्वती और शिव जी के बेटे हैं। मतलब जो भगवान खुद माँ बाप को इतना आदर सम्मान देते हैं, वो हमें भी यही सिखाते हैं कि

0: सबको आदर सम्मान देना बहुत बड़ी बात है और बहुत ही अच्छी। तो आज सुबह जब भी आपको मौका मिले अपनी माँ को अपने बड़ों को ज़रूर चरण स्पर्श कीजिए और एक बार उनको सभी को बोलिए ओम नमः शिवाय।
1: You're listening to RM3 Radio.

0: RM3 Radio.
1: भक्तों, महादेव को हम डरते हुए याद करते हैं, लेकिन एक बात बताऊं, शिव जी सबसे जल्दी पिघलने वाले देवता हैं और वो एक ऐसे परमात्मा हैं जो सच्चाई को पसंद करते हैं। थोड़ा सा दिल का दर्द और भोलेनाथ फौरन सबके

सामने आ जाते हैं, इसलिए उन्हें भोलेनाथ कहा जाता है। वो मांगने वाले को दिल से देखते हैं, उनके शब्द नहीं देखते। आज जो भी मन में हो बस महादेव को कह दीजिए, हर हर महादेव कह के।

0: 94.6 98.2 आप सुन रहे हैं RM3
1: RM3 Radio.

0: भक्तों, श्री हरि को पालनहार क्यों कहते हैं? क्योंकि वो किसी को रास्ते में छोड़ते नहीं। जब राम बने तो अयोध्या का दिल थाम लिया, जब कृष्ण बने तो गोकुल को प्यार से भर दिया, हर बार हर रूप में सिर्फ प्रेम दिया और प्रेम ही बांटा। अगर आप थके हुए तो जान लो, नारायण का प्यार कभी थकता नहीं, वो हमेशा अपने हाथों में थाम के रखते हैं। ये भजन आप सबके लिए।
1: RM3 Radio.

0: भक्तों, हनुमान जी के बारे में सबसे प्यारी बात पता है क्या है? वो कि उन्होंने कभी खुद के लिए कुछ नहीं मांगा, सब कुछ, हर सांस, हर चीज सिर्फ श्री राम के लिए मांगी। यही तो सच्चा प्यार है ना, जो बिना शर्त के, जो बिना मांगे दे दे, वो हर मुश्किल में साथ खड़ा रहे, वो ही है प्रभु राम। और राम बिना हनुमान के कभी चल ही नहीं सकते।
1: RM3 Radio.

0: भक्तों, श्री राम सिर्फ भगवान नहीं, वो एक आदर्श इंसान है। उन्होंने वनवास में भी ना तो कभी किसी से शिकायत की ना हार मानी, क्योंकि उनके दिल में प्यार था, माँ के लिए सम्मान था, माँ सीता के लिए प्यार था, अपनी सभी माताओं के लिए प्रेम था। हर उस इंसान के लिए जो भी उन पर भरोसा करता है, उनके लिए बस हर मुश्किल में साथ खड़े हो जाते हैं। और राम जी की तरह चुपचाप बनिए, क्योंकि अयोध्या ज़रूर आती है और अयोध्या ज़रूर आएगी।
1: RM3 Radio.

0: भक्तों, ये था आज के हमारे भक्ति में शक्ति के पल, जो आज सिर्फ भक्ति नहीं प्रेम और प्यार से भरे थे। बप्पा का आशीर्वाद, महादेव जी की शांति, नारायण का साथ और राम जी की हिम्मत, हनुमान जी का प्रेम और प्यार और सद्भावना, ये आज सब आपके साथ रहे। मैं थी आपके साथ पूनम। RM3 रेडियो मनोरंजन पर अपना ख्याल रखिएगा, अपनों का प्यार दीजिएगा और उनका भी ख्याल रखिएगा। मेरे बाद आएंगे आपके साथ डेविड अपने प्रोग्राम के साथ, उनका साथ ज़रूर दीजिएगा। आप सभी को हर हर महादेव, जय श्री गणेश।
1: You're listening to RM3 Radio Manoranjan.
2: RM3 Radio.

0: Center 95.5, North South 95.6, East West 98.2.
1: You are listening your RM3 Manoranjan Radio.
2: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station.
3: घड़ी हिला लीजिए, दोपहर के ठीक 12 बज रहे हैं, समय हुआ है समाचार का.

0: आइए सुनते हैं समाचार अदिति के साथ। नमस्कार।
1: नमस्कार किनिशा, श्रोताओं को भी नमस्कार। आज से नेशनल एनर्जी एफिशिएंसी अभियान एक नए चरण में प्रवेश कर रहा है, जो इस साल के नवंबर महीने के आखिर तक चलेगा। ये पहल सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड और एनर्जी एफिशिएंसी मैनेजमेंट ऑफिस की है। भले ही सर्दियों के दौरान देश में बिजली की मांगें गर्मियों की तुलना में लगभग 200 मेगावाट कम होती है, फिर भी जागरूकता पर बल दिया जा रहा है, खासकर मौजूदा जियोपॉलिटिकल अस्थिरता के कारण ईंधन की आपूर्ति में आ रही बाधाओं को ध्यान में रखते हुए। डिजिटल इनोवेशन प्रोफाइल के माध्यम से मॉरिशस अपने तकनीकी परिवर्तन को गति दे रहा है। इस राष्ट्रीय रणनीति का मकसद है देश के डिजिटल इकोसिस्टम को सुनिश्चित और सुव्यवस्थित करना। आईसीटी मंत्री अविनाश राम तोहल के अनुसार हाल के महीनों में फिनटेक का तेजी से विकास हुआ है और मोबाइल माध्यम से पेमेंट का व्यापक रूप से इस्तेमाल होने भी लगा है। स्थानीय स्तर पर नवाचार को बढ़ावा देने के वास्ते बैंक ऑफ मॉरिशस के सहयोग से बुनियादी मूल ढांचे मजबूत करने और वित्तीय प्लेटफॉर्म्स के अंतर्गत सुरक्षा बढ़ाने को प्राथमिकता दी जा रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दिन ब दिन इंसानों की रोजमर्रा की जिंदगी का महत्वपूर्ण हिस्सा बनता जा रहा है। इसके साथ जुड़ा सबसे अहम सवाल ये है कि ये क्रांति है या मानवता के लिए एक खतरा। इस मुद्दे पर विचार करने के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ मॉरिशस ने आज और कल फ्रांसीसी राजदूतावास और इंस्टीट्यूट फ्रांसिस दे मोरिस के सहयोग से एक राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया है। मुख्य वक्ता फ्रांस के डिजिटल ह्यूमैनिटीज विशेषज्ञ, खोजकर्ता और साहित्यकार अलेक्जेंड्र गेफेन होंगे। इस सम्मेलन में मॉरिशस, रोमानिया, फ्रांस, भारत, यूके और रोमानिया सहित करीब 20 देशों के साहित्य और अनुवाद

विशेषज्ञ तथा शोधकर्ता एकत्र होंगे। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने दावा किया है कि अमेरिका और ईरान एक ठोस शांति समझौते पर काम कर रहे हैं और आज एक संधि तय होने की उम्मीद की जा रही है। इस बात का ऐलान उन्होंने अपने भारत दौरे के अंतर्गत कही। नए प्रस्तावों में 60 दिनों का युद्ध विराम आगे बढ़ाना, हॉर्मुज जल मार्ग खोलना, ईरान के परमाणु प्रोग्राम पर गहराई से बातचीत जारी रखना जैसे मुद्दे शामिल हैं। इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए, आज्ञा दीजिए, नमस्कार।

0: खाना सफर खाना सफर
1: सोमवार 25 मई घड़ी मिला लीजिए दोपहर के 12:04 RM3 रेडियो मनोरंजन पर आप सभी लिसनर्स का स्वागत है। हेलो, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं सुमी और आज एक बार फिर हम आ चुके हैं आपका साथ देने के लिए रेडियो मनोरंजन पर अभी से लेकर दोपहर के 2 बजे तक। सो बताइएगा मंडे का दिन कैसे बीत रहा है। ऐसे मौसम इस ओर तो हल्के हल्के बादल छाए हैं, हल्की हल्की सी बरसात बीच बीच में हो रही है, वहीं पर धूप भी खिल रही है। मौसम चाहे जैसा हो, यहाँ पर ये जो सफ़र है ये खुशनुमा होने वाला है क्योंकि खूबसूरत गाने तराने आपके लिए हम चलाएंगे, आपकी डेडिकेशंस को हम शामिल करेंगे। सो देर किस बात की है, जुड़ जाइए हमारे इस प्रोग्राम से। और अगर आप हमारे साथ डेडिकेशन करना चाहते हैं, अपनी डेडिकेशंस को हम तक पहुँचाना चाहते हैं, आप हमें मैसेज कर सकते हैं 5250-6200 पर। हमारा फ़ोन नंबर है 4028070। साथ ही थोड़ी ही देर में हम जो है हमारे टिकटॉक के पेज पर, रेडियो मनोरंजन के टिकटॉक पेज पर लाइव भी होंगे। तो चलिए आज के इस प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं डार्क फिल्म के इस खूबसूरत गीत के साथ।

सुहाना सफर सुहाना सफर। चलिए सुहाना सफर का ये जो सफर है और भी खूबसूरत हो जाता है जब हमारे लवली लिसनर्स हमारे साथ जुड़ते हैं। और ये तो लंच का टाइम है, तो लंच करते करते गानों का भी मज़ा उठा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी को, बन अपीछी शुभ आहार हम कहेंगे। और कहते हैं ना कि अच्छे अच्छे गाने या अच्छी कंपनी हो खाना खाते वक्त आसपास कोई हो तो खाने का स्वाद और भी बढ़ जाता है। और यहाँ पर आप हमारे साथ जुड़ते जा रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगले गाने की ओर हम बढ़ते हैं और यहाँ पर इस समय जो है हमारे साथ उषा जी जुड़ी हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया उषा जी हमारा साथ देने के लिए। और उषा जी जो अगला गाना है आपके नाम हम करते हैं रफ़ी साहब लता जी की आवाज़ों में, शोला और शबनम फिल्म का ये तराना है, जीत ही लेंगे बाजी हम। तो चलिए गाना आपके नाम, सभी जीता परिवार के नाम और जितने भी लोगों का ये गाना फेवरेट है उन सभी के नाम। ऐसे गाना बड़ा ही खूबसूरत है तो आप सभी के लिए चल पड़ा।

0: सुहाना सफर सुहाना सफर।
1: यकीनन दर्पण से तो खासकर हम लेडीज़ को बहुत ही प्यार है। ये आईना जो है खूबसूरती को तो दिखाता ही है, साथ ही ये हमें ये भी दिखाता है कि हम अपने आप से कितना खुश है। आईना कभी कभार दिल की बात कह देता है या दिखा देता है कह सकते हैं, क्योंकि जो कुछ हम अपनी आँखों में छुपा कर रखते हैं आईने के ज़रिए वो दिखाई ही देता है। और वह जहाँ पर उदासी भी झलकती है, जहाँ पर खुशी भी दिखाई देती है। और अभी के लिए बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पूछ रहे कि कब हम लाइव होंगे टिकटॉक पर। थोड़ी ही देर में हम लाइव होंगे। बस आपका प्यार भरा साथ हमें यूं ही मिलता रहे। हेमलता जी शुक्रिया हमारा साथ देने के लिए। और यहाँ पर चलिए अगले गाने की बारी है। त्रिशूल फिल्म का ये जो तराना है, लता जी, नितिन मुकेश और साथियों की आवाज़ों में छल पड़ा आप सभी के लिए।

0: सुहाना सफर।
1: चलिए सुहाना सफर जो है रेडियो मनोरंजन पर इस समय इस प्रोग्राम में आप हमारा साथ दे रहे हैं, थैंक यू सो सो मच। और ऐसे तो रेडियो के ज़रिए आप हमें सुन ही रहे हैं, साथ ही आपके फ़ोन कॉल्स और आपके मैसेजेस भी हमें मिल रहे हैं। और इस टाइम हम लाइव हैं हमारे रेडियो मनोरंजन के टिकटॉक के पेज पर, और बहुत सारे लवली लिसनर्स ऑलरेडी जुड़ चुके हैं हमारे इस लाइव को, लाइक कर रहे हैं और शेयर कर रहे हैं। हेलो सानिया जी, हेलो राजेश, थैंक यू फॉर कनेक्टिंग विद अस। फिर हमारे साथ सुबी जी है, सुबी जी वाकवा से हमारा साथ दे रहे हैं। जितेन जी, सर्वेश जी, आप दोनों को भी नमस्कार। फिया जी, यस, अगला गाना जो है एक रोमांटिक सा तराना है, यादों की बारात फिल्म से लिया गया, चुरा लिया है तुमने जो दिल को। इस गाने को खासकर हम फिया जी आपके नाम करते हैं, उम्मीद करते हैं ये आपको गाना ज़रूर पसंद आएगा। यूज़र एंजल, थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए। सुबी जी, कौन सा गाना आपने मांगा? बुलेट, ये कौन सी फिल्म है आप हमें बताइएगा ठीक से, ताकि अगर आपका गाना मिला तो हम चला

आएंगे ज़रूर। हेलो अक्षय जी, हेलो फीना, हेलो ऐशना, क्वीन अनुषा है, पिंकी, हाय पिंकी, हाउ आर यू। ऐसे लाइव पर आने के पहले हमें कुछ मैसेज भी मिले व्हाट्सएप पर कि आप लाइव कब शुरू करेंगी, तो हमारा लाइव शुरू हो चुका है, आप जुड़ सकते हैं। पानवी कैसी है आप, पानवी? ऑल राइट फिया जी, इस गाने को मौका मिला तो हम ज़रूर चलाएंगे। रोटी कपड़ा और मकान फिल्म का तराना। सुल्ताना जी नमस्ते, सुल्ताना आप कैसी है? आई हेट नॉनसेंस, ओह ये आपका यूज़र नेम है, ओके चूर, ओके। साधना जी आप लालमाची से हमारे साथ जुड़ी है, थैंक यू सो सो मच। अनीता जी शुक्रिया साथ देने के लिए। सुनीता गणेश जी भी हमारा साथ दे रही है। संगीता जी आपका भी स्वागत हम करते हैं। अगला गाना रंभा जी आपके नाम हम करेंगे। सभी पिथिया परिवार, सभी पिछिया परिवार के नाम प्लेनबॉ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ऐसे एक रंभा जी स्विट्ज़रलैंड से भी हमारे साथ जुड़ती है, तो क्या आप वही है बताइएगा ज़रूर। तो चलिए अभी के लिए यादों की बारात पर उनका ये जो तराना है आप सभी लवली लिसनर्स के नाम हम करते हैं। आशा जी रफ़ी साहब की आवाज़ों में चुरा लिया है तुमने जो दिल को।

चलिए सुहाना सफ़र का ये जो सफ़र है पुराने गानों के साथ हम इसे आगे ले जा रहे हैं। और अगला जो तराना है रोटी कपड़ा और मकान फिल्म का ये गीत होगा, पिया जी आपके नाम। इस गाने को हम करते हैं। मीला रामस्वामी जी पालमा से हमारा साथ दे रही है श्रद। यही गाना आपके लिए भी जाएगा और ये जो खूबसूरत सा गीत है इसे आप सुनेंगे लता जी, मुकेश साहब और साथियों की आवाज़ों में। मैं ना भूलूँगा यकीनन इन गानों को हम कभी भूल नहीं सकते हैं। गाने अपने आप में इतने प्यारे हैं, इतने रोमांटिक है कि क्या कहें। और चलिए यही गाना श्रीनिधि जी आपके लिए भी हम करते हैं। आप हमें मैसेज कर सकते हैं 5250-6200 पर अपने डेडिकेशंस के साथ। और अगला गाना आपके नाम हम करते हैं। बॉम्बू से सुंदर परिवार हमारे साथ जुड़े हैं। अगला गाना जो है लता जी और मुकेश साहब की आवाज़ में है। उम्मीद करते हैं गाना आपको ज़रूर पसंद आएगा। इसे आपने अपना नाम नहीं लिखा तो चलिए ये गाना सभी सुंदर परिवार के नाम हम चलाएँगे यहाँ पर। ये गाना उन सभी के लिए भी जो इस गाने को पसंद करते हैं।

एक्चुअली इन खूबसूरत गानों को कौन भूल सकता है भला, कभी भी नहीं भूल सकते, इसलिए तो शायद ये गाने एवरग्रीन ओल्ड इज गोल्ड कहलाते हैं। जब भी इन्हें सुनो मानो एक अलग ही दुनिया में हम चले जाते हैं, सारी परेशानियाँ सारी जो फिक्र है अपने आप दूर हो जाती हैं। और इन गानों को सुनते सुनते कब हम इन गानों को

0: गुनगुनाने लगते हैं और चेहरे पर मुस्कान आ जाती है, पता ही नहीं चलता।
1: सुहाना सफर।
0: यस, दिस इज योर सुहाना सफर ऑन रेडियो मनोरंजन। और चलिए अगला गाना जीवन मृत्यु फिल्म का तराना है। यहाँ पर किसी ने हमसे कहा था एक गाना लता जी और रफ़ी साहब की आवाज़ों में हो जाए, सो ये गाना उनके नाम हम करते हैं। और

मेद और सभी सुरूप परिवार के नाम करते हैं। हाय परी, कैसी हैं आप? ऐसे परी हमें काफ़ी देर से पूछ रही थी व्हाट्सएप पर मैसेज करके कि लाइव कब शुरू होगा। सो फाइनली लाइव शुरू हो चुका है और आप भी जुड़ चुकी है, शुक्रिया। अच्छा लगता है जानकर कि आप बेसब्री से हमारा इंतज़ार करते हैं इतने प्यार से, तो बहुत बहुत शुक्रिया। हाय मानिता जी, जितेन है यहाँ पर, प्रवीण है, सुल्ताना जी, हाय सुल्ताना जी, शायद आपने ही कहा था एक गाना लता जी की आवाज़ में, तो चलिए जो अगला तराना है लता जी और रफ़ी साहब की आवाज़ों में आपके नाम करते हैं। मलिक जी, प्रोग्राम को पसंद करने के लिए शुक्रिया। श्रवणी है, श्रद्धा है, वीना है, विहाब यादव, अंश जी, गाना आपकी ओर से साइलेश के नाम, यादव जी हमारे साथ जुड़े हैं साइलेश के लिए, ऑल राइट। रीना है, रीना जी, गाना आपकी बेटी रूही और आपके हस्बैंड के नाम हम करते हैं। कल्याणी जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़ी हैं। रुमिता जी, अगला गाना आपकी ओर से सभी दशरथ और सभी गुजा परिवार के नाम। मानिता जी, प्रीति जी, आपका भी प्यार भरा साथ हमें मिल रहा है, इसके लिए शुक्रिया।

0: अभी सावन का तो नहीं पता लेकिन गानों की बरसात यहाँ पर जरूर हो रही है, वो भी खूबसूरत गानों की। और देखते ही देखते दोपहर के 12:55 ऑलरेडी हो चुके हैं। बढ़ते हैं हम इस अगले तराने की ओर और अगले गाने के साथ हम जो है बढ़ने वाले हैं 1 बजे के समाचार की ओर, और समाचारों के उस पार जो है सुहाना सफ़र ये प्रोग्राम जारी रहेगा, चलेगा दोपहर के 2 बजे तक। तो बस ऐसे ही साथ देते रहिए, इन खूबसूरत गानों को गुनगुनाते रहिए।
1: RM3 रेडियो।

0: Center 95.5, North South 95.6, East West 98.2.
1: You are listening your RM3 Manoranjan Radio.
2: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station.
3: आइए सुनते हैं समाचार करुणा के साथ. नमस्कार.
4: नमस्कार गिनी शाह, सभी को नमस्कार. शागुस ऑक्यूपेलागो का मुद्दा फिर से चर्चा में है. बरतानी संसद में एक प्रस्ताव पेश किया गया जिसका मकसद शागुस द्वीपों को मॉरिशस को वापस सौंपने की प्रक्रिया को रोकना है. ये एक प्राइवेट मेंबर्स बिल है जिसे हाउस ऑफ लॉर्ड्स के एक सदस्य पीटर जेम्स विटल द्वारा प्रस्तुत किया गया. इस बीच ब्रिटिश सोवरेनिटी प्रोटेक्शन शागुस आइलैंड्स बिल एक व्यक्तिगत पहल है और बरतानी सरकार की आधिकारिक नीति को नहीं दर्शाती. मॉरिशस में महंगाई अभी भी एक बड़ी चिंता बनी हुई है. बैंक ऑफ मॉरिशस के एक हालिया सर्वेक्षण के अनुसार वित्तीय सेक्टर के बहुत से कार्यकर्ताओं का अनुमान है कि आने वाले महीनों में दाम वृद्धि जारी रहेगी जिससे मॉरिशनों की खरीद शक्ति प्रभावित होगी और दिसंबर तक महंगाई दर लगभग 5.3% तक पहुंच सकती है. विदेश में अफ्रीकी महाद्वीप में इबोला वायरस तेजी से फैल रहा है. ऐसे में भारत ने सतर्कता बरतते हुए कोंगो, युगांडा और दक्षिण सूडान के लिए ट्रैवल एडवाइजरी जारी कर दी है. भारतीय नागरिकों से इन देशों की गैर जरूरी यात्रा टालने की अपील की गई है. और रूस ने यूक्रेन पर भीषण हमले किए हैं जिसमें राजधानी कीव स्थित विश्व स्वास्थ्य संगठन का दफ्तर भी क्षतिग्रस्त हो गया. WHO के डायरेक्टर जनरल ने हमलों की निंदा करते हुए लड़ाई बंदी की अपील की है. इसी के साथ समाचार समाप्त हुए. कुछ ही समय बाद शोक समाचार. ओल्ड स्कूल रोड कौजाबल में 75 साल के 75 ईयर ओल्ड जनाब अब्दुल अलीम टारसू, जिन्हें लोग अलीम से जानते थे, इंतकाल कर गए हैं. जनाजा आज दिन के 2 बजे इनके बेटे नूरानी टारसू के मकान ओल्ड स्कूल रोड कौजाबल से निकालकर दफनाने के लिए कौजाबल के ही कब्रिस्तान ले जाया जाएगा. फ्यूनरल टुडे एट 2 PM. और खुतवायाल हाईलैंड्स में 77 साल की 77 ईयर ओल्ड श्रीमती विद्यावती तपसी पैदाइशी नाम फाउडो जो सांता से जानी जाती थी की मृत्यु हो गई है. अर्थी आज सपहर 3 बजे इनके मकान खुतवायाल हाईलैंड से उठाकर दाह संस्कार के लिए फिनिक्स की स्मशान भूमि ले जाई जाएगी. क्रिमेशन टुडे एट 3 PM. शोकग्रस्त इन परिवारों के प्रति

0: हमारी दिली हमदर्दी है।
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv. You're listening to RM3 Radio Manoranjan. सुहाना सफर।
0: चलिए सुहाना सफर के इस सेकंड आवर में एक बार फिर से आप सभी लिसनर्स का, हमारे सभी फॉलोअर्स का, आप सभी का वेलकम हम करते हैं। दोपहर के 1:05 होने को है। रेडियो मनोरंजन पर यू आर लिसनिंग टू सुहाना सफर। 2 तक पुराने गानों का ये जो सफर है चलने वाला है और बड़े ही प्यार से आप हमारे साथ कनेक्टेड है। थैंक यू सो मच। उम्मीद करते हैं आज का दिन आप सभी के लिए बहुत अच्छे से बीत रहा होगा, गानों को एंजॉय कर रहे होंगे। और इस आते वीकेंड जो है यहाँ पर हम मदर्स डे मनाने वाले हैं, तो इसके चलते बहुत से लोग जो है गाना मांग रहे हैं। तो चलिए अगला जो तराना है, सुरीनाम की जयश्री जी, आपकी ओर से आपकी मामा इशंती के नाम, और यही गाना उन्होंने कहा हो सके तो सभी माओ के नाम डेडिकेट किया जाए। यहाँ पर मानिता जी ने हमें मैसेज किया है, हर हर महादेव। मानिता जी, हाउ आर यू? हम बिल्कुल ठीक है, आशा करते हैं आप बिल्कुल, आप भी ठीक है। ओ, आपके यहाँ छुट्टी है आज, तो चलिए अच्छी बात है, छुट्टी है तो ऐसे में आप हमारे साथ जुड़ी है, धन्यवाद। और अगला गाना ओके, आपके नाम हम करेंगे आपकी माँ सुमंती के लिए, सेंट जूलिया विलार से वह हमारा साथ दे रही है। साथ में आरती है, सचिता है, बबीता है, रेखा है, पूरे परिवार के नाम जो इस समय बड़े ही प्यार से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दो दिशाएं फिल्म का ये तराना है, लता जी के नाम, लता जी की आवाज़ में आप सभी के नाम हम करते हैं।

0: सुहाना सफर।
1: चलिए सुहाना सफ़र ये प्रोग्राम और ये जो गाना हमने चलाया, बहुत सारे हमारे लिसनर्स जो है इमोशनल हो गए हैं। चलिए, होता है माता पिता जब दूर हो जाते हैं तो किसी कारणवश साथ में नहीं होते हैं, तो ऐसे दिन जब करीब आते हैं तो मन भारी हो जाता है। लेकिन जहाँ भी है वो उनका आशीर्वाद अपने बच्चों के साथ हमेशा होता है, और हमारे मन में भी यही आशा होती है, यही प्रार्थना होती है उनके नाम के वो जहाँ भी है वो हमेशा अच्छे रहे, उन्हें कोई परेशानी ना हो, दुख ना हो और उन्हें भी शांति मिले। तो चलिए, यहाँ पर अनीता जी आप है, रागिनी जी आपके दुख को हम ज़रूर समझते हैं। चलिए अगले गाने की ओर हम यहाँ पर बढ़ेंगे। मानिता जी, अगला गाना आपके नाम, आपकी मौसी रजनीति के नाम। यादव जी फिजी से हमारा साथ दे रहे हैं। रेशमा जी, शुक्रिया साथ देने के लिए। वी हैव शारदा, आपके हस्बैंड के नाम अगला गाना जाता है, यहाँ पर शारदा है। फिर तनवीर खालिद जी यूके से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सरगम है, जुल्फिकार है। वी हैव जुबैदा, निशा, लाइली, श्रद्धा, रिसोल जी, हम आपको बिल्कुल नहीं भूले हैं। जितेन जी, अनीता जी, आपके प्यार भरे साथ के लिए शुक्रिया। और रागिनी जी, यही गाना आपके नाम। प्रीति जी, आप भी फिजी से हमारा साथ दे रही है तो बहुत बहुत शुक्रिया। इस समय प्रकाशवती जी बेल्जियम से हमारे साथ जुड़ी हुई है, कह रही है कि बढ़िया सिलेक्शन है, बेल्जियम में मौसम बहुत सनी है, फूल खिले हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, सुबह सुबह जो है उनके यहाँ मौसम बड़ा अच्छा है। तो चलिए अगला गाना आपके नाम भी हम करते हैं। प्रकाशवती जी हमेशा जो है हमारे प्रोग्राम से जुड़ी रहती है, हमारा साथ देती है। और यहाँ पर जो है अगला गाना जाता है फॉर माई फ्रेंड्स, स्पेशली विशाल यहाँ पर, और लीला है, रामलीला फिल्म का गाना। रामलीला अगर नई फिल्म का आप बात करें तो यहाँ पर अभी जो है सुहाना सफ़र ये प्रोग्राम है और नई फिल्मों के गाने इस प्रोग्राम में नहीं चल रहे हैं। सो विशाल जी, ये अगला गाना जो है हम आपके दोस्त

के नाम करते हैं, उम्मीद करते हैं ये गाना आपको ज़रूर पसंद आएगा, क्योंकि अब सुहाना सफ़र जो है इसमें नए गाने नहीं चलाते हैं, इसमें पुराने गाने चलते हैं, 60s के, 70s के, कुछ 80s के गाने भी हम चलाते हैं। तो गाना जाता है नेहा आपके नाम, विशाल की ओर से और पूरे फैमिलीज़ के लिए।

0: सुहाना सफर।
1: ऐसे जब हम छोटे थे तब हमें पुराने गाने सुनना नहीं पसंद था, क्योंकि जिस उम्र में हम बढ़ते रहते हैं, बड़े होते रहते हैं, हमें उस दौर के गाने अच्छे लगते हैं। लेकिन जब बड़े होते होते जाते हैं तब जो है पुराने गानों की अहमियत, पुराने गानों की जो खूबसूरती होती है, पुराने गानों में जो गहराई छुपी होती है, हमें समझ में आता है। और आज हम ज़्यादातर पुराने गाने पसंद करते हैं, उन गानों को पसंद करते हैं जिन सालों में हमारा जन्म हुआ था, क्योंकि नए गाने उतने दिल को नहीं छूते हैं। लेकिन ये नहीं कह सकते कि नए गाने अच्छे नहीं होते हैं, नए गाने भी काफ़ी अपने आप में बड़े कमाल के होते हैं, क्योंकि अभी के भी काफ़ी आर्टिस्ट दे आर वेरी बहुत ही जो है प्रोफेशनल है, काफ़ी जो है टैलेंटेड है, अच्छे अच्छे गाने, अच्छा अच्छा संगीत, अच्छा म्यूज़िक बनाते हैं। हाँ, लेकिन जो पुराने गानों का जो दौर था वो लाजवाब था, क्योंकि उसमें जो है ऐसी चीज़ें होती थी जो हमारे दिल को छू जाती थी, कुछ बातें ऐसी गानों में छुपे हुए, कुछ कहानियाँ किस्से ऐसे होते थे कि मानो ऐसा लगता था कि कहीं ये हमारी ही कहानी तो नहीं, या ऐसा लगता था कि उस गाने में जो कहा जा रहा है शायद कोई हमारे लिए ऐसा कहे या करे, है ना। चलिए ऐसा ही एक जो अगला तराना है आप सभी के नाम हम करते हैं, द ग्रेट गैम्बलर फिल्म से लिया गया, दो लफ्ज़ों की है दिल की कहानी, अशोक जी, अशोक पारेख जी, ये गाना आपके नाम हम करते हैं। रजनी जी, यही गाना आपके लिए भी, रजनी महाबिया जी, यादव अमरीश जी, शैलेश जी, याद आप लोगों के नाम ये गाना हम चलाते हैं। कृतिका जी, शुक्रिया साथ देने के लिए। एंजल, अगला गाना आपकी सिस्टर सिमला के नाम, सिसहा के नाम, देवनेश हैं, गाना आपकी ओर से आपकी दादी सेरा और फूफू श्वेता के नाम। रूबा, आप हमारे साथ जुड़ी हुई है, शुक्रिया। तो चलिए यहाँ पर द ग्रेट गैम्बलर फिल्म का ये तराना चल पड़ा है, और ये गाना भी अपने आप में आइकॉनिक सॉन्ग है। कुछ गाने ऐसे होते हैं जिनका जो पिक्चराइजेशन होता है, जिसमें जो सीन होते हैं, जो बैकग्राउंड होता है, सब हमें याद होता है ना। आपको याद है इस गाने में कौन नज़र आए थे? अगर याद है तो बताइए कि कौन कौन से एक्टर और एक्ट्रेस नज़र आए थे।

0: amore mio, dove sei tu? Hey, क्या गा रही है?
1: अपने प्यार को याद कर रहा है और कह रहा है कि
0: ऐसे नहीं, गा के सुनाओ ना।

0: सुहाना सफर सुहाना सफर।
1: तो चलिए यहाँ पर सुहाना सफर कहते हैं ना कि हम सफर साथ हो और कोई ऐसा हम सफर हो जिसके साथ जिंदगी का ये जो सफर है वो खूबसूरत लगे और बातें करते करते एक दूसरे को समझते समझते ये सफ़र कट जाए तो इससे बेहतर और कुछ नहीं। कहते ना कि मंजिल तक पहुंचना हम लोगों का जो है लक्ष्य नहीं होता है, बस सफ़र खूबसूरत होना चाहिए, मंजिल अपने आप खूबसूरत हो ही जाती है। और चलिए लवली लिसनर्स, आपका शुक्रिया, जितने टिकटॉक के फॉलोअर्स हमारा साथ दे रहे हैं शुक्रिया। फ्लिक ऑफ लक्स अनीता जी साथ जुड़ी है। अगला गाना आपके नाम जाता है बाबा कौ सेनेगल से। हमारे बहुत सारे फॉलोअर्स हमारा साथ दे रहे हैं, हेलो आप सभी को भी। वैदेही जी थैंक यू सो मच, सरन जी, वेद जी, नीलिमा जी। अगला गाना मानव और आपकी मॉम रेनू के नाम हम करते हैं। विहाबा जय, सभी गंगाराम परिवार इस समय हमारा साथ दे रहे हैं। शकुंतला जी है, अशोक है, केशनी है, केशवी है, उर्वी है और प्यार से हमारे साथ जुड़े हैं, सो शुक्रिया। यहाँ पर अगला मैसेज जो है ये आया है हमें ज्ञान बिहारी जी की ओर से। हेलो ज्ञान जी, गाना जाता है आपके फ्रेंड सुनील के नाम, साथ में रानी है, भामा है, संजीव।

है आरएम3 के सभी लिसनर्स के लिए कह रहे हैं कि आप हमारा जो क्विज शो है जो एमबीसी टीवी पर हर संडेस को चल रहा है आप उसे देख रहे हैं आपको बड़ा अच्छा लग रहा है तो थैंक यू सो सो मच हमारी कोशिश होती है रेडियो हो या टीवी हो ऐसे प्रोग्राम्स आपके लिए लेकर आए जो आपको अच्छे लगे और इन सभी प्रोग्राम्स को आप अप्रिशिएट करते हैं इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया तो चलिए यहाँ पर मिस्टर नटवरलाल फिल्म का ये गाना आप सभी के लिए चल पड़ा किशोर दा लता जी की आवाज़ है ऑब्वियसली इस गाने में अमिताभ जी थे साथ में रेखा थी

0: सुहाना सफर
1: रेडियो मनोरंजन पर आप सुन रहे हैं। दोपहर के 1:35 ऑलरेडी हो चुके हैं। अब बारी है इस अगले तराने की। अगला जो गाना है सत्यम शिवम सुंदरम फिल्म का गाना है, चंचल शीतल निर्मल कोमल मुकेश साहब और साथियों की आवाज़ों में ये गाना परी आपके नाम जाता है, आपकी ओर से आपके सभी फ्रेंड्स के लिए और ख़ासकर आपकी सभी बहनों के लिए। वैदेही जी हमारे साथ जुड़ी है, वी हैव विद्या नायको खान कुवैत से हमारा साथ दे रहे हैं। माला जी शुक्रिया आपके प्यार भरे साथ के लिए। देवांश थैंक यू फॉर कनेक्टिंग विद अस। और चलिए यहाँ पर अगला गाना विशाल जी आपके नाम हम करते हैं। और यहाँ पर ये जो गाना है सत्यम शिवम सुंदरम फिल्म का तराना है। ऐसे फिल्म काफ़ी अलग सी थी, लोगों ने इस फिल्म को बहुत ही अप्रिशिएट किया था। फिल्म में शशि कपूर साहब नजर आए थे, जिनतमान थी, फिल्म के गाने बड़े कमाल के थे।
2: You're listening to RM3 Radio।

एक्चुअली यहाँ पर उमा जी साथ दे रही है, कह रही है एंजॉयिंग लवली सॉन्ग्स, थैंक यू सो मच उमा जी। थोड़ी देर पहले किसी ने हमसे एक रिक्वेस्ट की थी गाने की, वो मैसेज शायद हमने मिस कर दिया है, पता नहीं, चलिए ढूंढते हैं। ट्विन केवानिश और ट्विन केवांश का जो है बर्थडे है, तो आपने शायद दोनों ही नाम केवांश ही लिख दिया है, ट्विन है यानी कि दो नाम होने चाहिए ना, तो केवांश और उनके जो भी भाई है या बहन है उनका बर्थडे था कल, तो आप लोगों को, आप दोनों को बर्थडे की बेस्ट विशेस। और साथ में जो है ये अगला तराना दादा दादी के नाम हम करते हैं, अनीता जी जो फ्लाक से हमारा साथ दे रही हैं, ममता फिल्म का ये गाना हम आपके नाम अभी करेंगे, रहे ना रहे हम। शैलेंद्र जी साथ दे रहे हैं, इंदिरा जी, श्यामा जी, शुक्रिया आप सभी जुड़ चुके हैं। मीरा जी प्यार भरे साथ के लिए शुक्रिया। साहिल जी, चलिए आप, आपका नाम हम ज़रूर याद रखेंगे साहिल जी। बबीता है, बाला है, यहाँ पर गोविंदा है, वी हैव देवी का, यादव अमरीश जी अयोध्या से जुड़े हैं, सिमरन जी हैं, मुश्ताक जी जो है वो भी हमारा साथ दे रहे हैं। तो अगला जो गाना है ममता फिल्म का तराना है, रहे ना रहे हम महका करेंगे। कहते हैं ना कि कुछ ऐसा करना चाहिए कि जाने के बाद भी लोग हमें याद करें, तो ये गाना इस चीज़ का परफेक्ट एग्जांपल है। तो ये गाना आप सभी के नाम हम करते हैं, और चले बहुत सारे फॉलोअर्स अभी भी हमारा साथ दे रहे हैं। शोभा जी बहुत बहुत शुक्रिया गानों को पसंद करने के लिए, शुक्रिया, गाना जाता है आपकी बेटियों के लिए। और यहाँ पर कमला जी हमारा साथ दे रही है, वी हैव पद्मिनी, दिनू जी बहुत बहुत शुक्रिया, समीमा जी कैसी है आप, ठीक तो है ना, कविता बंजन जी यही गाना आपके लिए भी।

0: सुहाना सफर।
1: चलिए मानो कि अभी अभी ये जो सुहाना सफ़र था इसकी खूबसूरत शुरुआत हुई थी, आप लोग जुड़ रहे थे, आपके डेडिकेशंस, आपके मैसेजेस, आपकी फरमाइशें आ रही थी और देखते ही प्रोग्राम जो है ख़त्म होने को चला। जी हाँ, इस अगले गाने के साथ 2 बज जाएंगे, सुहाना सफ़र ये प्रोग्राम समाप्त हो जाएगा। और जाते जाते दिल से आप सभी का शुक्रिया हम करते हैं, आपने हमारा साथ दिया इस प्रोग्राम में, आप हमारे साथ जुड़े, गानों को पसंद किया, शो को इन्जॉय किया। जल्द हम आपसे मिलने फिर लौटें। 2 बजे आप सुनेंगे समाचार, उसके बाद आप सुन पाएंगे प्रोग्राम संस्कृति की बातें रेडियो मनोरंजन पर। तो हमें दीजिए इजाज़त अगली मुलाकात तक के लिए, और ऐसे ही रेडियो मनोरंजन पर साथ देते रहिए, जुड़ते रहिए और प्रोग्राम्स को जो है एंजॉय करते रहिए।
0: सुहाना सफर। You're listening to RM3 Radio Mano.

खरीद शक्ति भी प्रभावित होगी और दिसंबर तक महंगाई दर लगभग 5.3% तक पहुंच सकती है। आज 25 मई को बलाक्लावा एमयू द्वारा शक्ति भी प्रभावित होगी और दिसंबर तक महंगाई दर लगभग 5.3% तक पहुंच सकती है। आज 25 मई को बलाक्लावा में मॉरिशस की साइबर सुरक्षा एजेंसी सर्ट एमयू द्वारा नेशनल साइबर ड्रिल 2026 आयोजित किया गया। इस राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा अभ्यास में कई सरकारी संस्थानों और सार्वजनिक एजेंसियों ने हिस्सा लिया। इसका मकसद बढ़ते और अधिक जटिल होते साइबर हमलों के बीच विभिन्न संस्थाओं की आपसी समन्वय क्षमता और त्वरित प्रतिक्रिया प्रणाली का परीक्षण करना था। इक्वल अपॉर्चुनिटीज एक्ट की धारा 34(2)(c) के तहत श्रीमती दिया बिसुंदयाल को इक्वल अपॉर्चुनिटीज ट्राइब्यूनल के अध्यक्षा नियुक्त की गई हैं और दालिदा नोएल मालिक को तथा मोहम्मद इकबाल मोहम्मद हुसैन ट्राइब्यूनल के सदस्य बने हैं। रेज्यूमे गणराज्य के राष्ट्रपति महामहिम धर्मवीर गोकुल के सामने उन्होंने पद की शपथ ली। विदेश में अफ्रीका महाद्वीप में इबोला वायरस तेजी से फैल रहा है, ऐसे में भारत ने सतर्कता बरतते हुए कोंगो युगांडा और दक्षिणी सूडान के लिए ट्रैवल एडवाइजरी जारी कर दी है। भारतीय नागरिकों से इन देशों की गैर जरूरी यात्रा टालने की अपील की गई है और रूस ने यूक्रेन पर भीषण हमले किए जिसमें राजधानी कीव स्थित विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का दफ्तर भी क्षतिग्रस्त हुआ है। WHO के डायरेक्टर जनरल ने हमलों की निंदा करते हुए लड़ाई बंदी की अपील की है। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। कुछ ही समय बाद शोक समाचार। Avenue Troquetia, Providence, quartier militaire, mais 10 salles qui 10-year-old minor Divyaraj Shivam Vaibhav Mitwa, minor Divyaraj Shivam Vaibhav Mitwa, qui mritu ho gayi hai. Arthi, aaj sapahar 3 baje, inke pita Kaviraj Mitwa ke makan Avenue Troquetia, Providence, quartier militaire, se utha kar दाह संस्कार के लिए मेजिन कौदेमास्क की स्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 3 PM। और ले घाव ब्रांच रोड घावबुआ में 62 साल की 62-year-old श्रीमती फुलवंती तपसी श्रीमती

0: ती फुलवंती तब से पैदाइशी नाम सुकारा जो वीना से जानी जाती थी की मृत्यु हो गई है। अर्थी कल दिन के 10 बजे इनके पति कंदयालाल तपसी के मकान ले घाव ब्रांच रोड घाव बुआ से उठाकर दाह संस्कार के लिए घाव बुआ की स्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमोरो एट 10 AM। शोकग्रस्त इन परिवारों के प्रति हमारी दिली हमदर्दी है।
1: Centre 95.5, North South 95.6, 95.6, East West 98.2.
2: You are listening your RM3 Manoranjan Radio. Manoranjan Radio.
3: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station.

0: संस्कृति की बातें
1: संस्कृति की बातें कार्यक्रम में मैं किरण आप सभी का स्वागत करती हूं। मेरा सप्रेम नमस्कार स्वीकार कीजिए। आज संस्कृति की बातें कार्यक्रम का विषय है भाषा और संस्कृति का वर्तमान और भविष्य। और इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ दो मेहमान हैं जिन पर अभी थोड़ी देर में मैं ज़्यादा जानकारी दूंगी। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण इस समय हो रहा है रेडियो मनोरंजन पर और साथ में MBC के फेसबुक पेज पर भी। और इस कार्यक्रम का प्रसारण होता है MBC और आप्रवासीघाट ट्रस्ट फंड के मिले जुले सहयोग से। और इस कार्यक्रम के आज के हमारे दो मेहमान हैं, एक तो हैं आप श्री प्रेमदीप चमन जी, बहुत बहुत स्वागत है, नमस्कार।
2: धन्यवाद, नमस्ते।
1: आप हिंदी स्कूल्स फेडरेशन के प्रधान हैं और इस कार्यक्रम में आपका स्वागत करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है प्रेमदीप चमन जी। और हमारे साथ हिंदी के एक अध्यापिका भी हैं श्रीमती अनिष्ठा बगन जी, नमस्कार अनिष्ठा जी, इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है,
3: बहुत धन्यवाद।
1: आज हम बात करेंगे, इस विषय पर गौर करेंगे कि क्यों हमें संस्कृति और भाषा पर इतनी जोर देनी चाहिए, क्यों हम हर सोमवार को यहाँ बैठते हैं और संस्कृति की बातें करते हैं। गुरु जी, आप हमें बताइए कि आज क्यों इतनी आवश्यकता पड़ चुकी है कि हमें कम से कम एक घंटा एक सप्ताह बैठकर अपनी संस्कृति, अपनी भाषा, अपने संस्कार पर बात करनी चाहिए।
2: एकदम, बहुत धन्यवाद। सभी दर्शकों को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, आपको धन्यवाद विशेष कि आप ऐसे कार्यक्रम को लेकर चल रहे हैं और जिसका प्रचारण पूरे देश वाले को सुन रहे हैं। भाषा और संस्कृति सबसे हमारे लिए एक मनुष्य के लिए मूल बात है। भाषा और संस्कृति का आदि समय से बहुत गहरा तारतम्य, बहुत गहरा संबंध रह चुका है। यदि भाषा ही केवल पढ़ाया जाए या सिखाया जाए बच्चों को और उसमें संस्कार न लाया जाए तो सारा कुछ बेकार है। भाषा के साथ संस्कृति का जुड़ा रहना बहुत ही अहम बात है, बहुत ही आवश्यक बात है। कहते हैं ना, भाषा गई तो संस्कृति गई।
1: जी हाँ,
2: हाँ, एक दूसरे के साथ बहुत ही गहरा संबंध है। जहाँ तक आपने कहा कि इसकी आवश्यकता क्यों है, ये तो आदि समय से, हम जब छोटे थे तो हमारे परिवार ने हमको एक साथ मिलकर भजन करने का, उसके पश्चात भोजन करने का ये आदेश दिया था,
1: संध्या के रूप में,
2: संध्या के समय। और यही बात आज के युग में अत्यंत आवश्यक हो गई है। सच है कि इस भागम भाग के ज़माने में, इस भीड़ की दुनिया में, इस बात को हम थोड़ा नकारते जा रहे हैं,
1: नज़रअंदाज करते जा रहे हैं,
2: जो एकदम से गलत हो सकता है समाज के लिए, बच्चे के लिए, आने वाले भविष्य के लिए। तो इस पर आवश्यकता यही है कि अभी जो बच्चे अब उठ रहे हैं, बालक घुटनों के बल से होकर खड़ा हो रहा है, तभी से उसमें कूट कूट कर ये बातें भरनी चाहिए। पहली बात तो यह, तोतली भाषा ही जो है, जिस प्रकार से माँ बाप सिखाते हैं बच्चों को, उसी में भाषा, जिस किसी कौम के हैं आप, अपनी मातृभाषा का संचार उसमें बदलना शुरू करें। और उसके पश्चात जो हमारे धर्म संस्कृति से जुड़ी हुई बात

0: हैं उसमें जोड़ने का प्रयास करें
1: अवश्य। और अभी जैसा कि श्री प्रेमदीप चमन ने कहा कि भाषा और संस्कृति का बहुत घनिष्ठ संबंध है, और विशेष रूप से जब हम पूर्वीय भाषाओं की बात करें तो हमारी भाषा में, आप पाठ्यक्रम को ही ले लीजिए, जो भी पुस्तक लेंगे हिंदी भाषा का उदाहरण लेते हैं, तो उसमें संस्कृति और संस्कार की बातें, मूल्य की बातें छुपी हुई है, जबकि पूर्वी भाषाओं का अध्ययन जब करते हैं तो वहाँ सिर्फ भाषा सीखते हैं और जो ह्यूमन वैल्यूज हैं वो अलग से सीखते हैं। तो यही सबसे ज्यादा विशेषता, सबसे बड़ी विशेषता और बहुत ज्यादा सुंदरता है पूर्वी भाषाओं की, कि यहाँ पर आप संस्कृति संस्कार ये दोनों भाषा के जरिए सीखते हैं। और हमारे साथ एक अध्यापिका हैं, श्रीमती अनिशा भगन जी। आप हमें ये बताइए कि आप जो कि हिंदी कक्षाओं का संचालन करती हैं, बच्चों को पढ़ाती हैं, हिंदी भाषा पढ़ाती हैं, और आप एक युवा पीढ़ी की अध्यापिका हैं, तो आपको क्या लगता है कि बच्चों को जब आप हिंदी सिखा रहे हैं तो क्या सिर्फ हिंदी सिखा रहे हैं?
2: जी, सर्वप्रथम मैं श्री प्रेमदीप चमन जी को बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी, क्योंकि उन्होंने मुझे यह सौभाग्य दिया कि मैं हिंदी स्कूल फेडरेशन का एक भाग बन पाऊँ। और मैं यह कहना चाहूँगी, जैसे गुरुजी ने कहा, अगर भाषा गई तो संस्कृति गई, तो युवा पीढ़ी के अध्यापक होने के नाते मैं यह हर सप्ताह जब मैं कक्षा में जाती हूँ मैं यह कहती हूँ मेरे छात्रों के साथ, जैसे आगे के अध्यापक जब होते थे आप कह पाएंगे कि बहुत सख्त होते थे।
1: हाँ, बच्चों को डर लगता था, अध्यापकों
2: को डर लगता था, क्योंकि मैं भी जब मैं कक्षा में बैठती थी अगर अध्यापक आएंगे तो नहीं हिलेंगे। हाँ, आजकल देखते हैं जो बच्चे हैं वे जैसे नहीं बैठ रहे हैं, वे चलते रहते हैं
1: स्वाभाविक रूप से, वो अपना हरकतें करते रहते हैं।
2: तो अध्यापक होने के नाते मैं उनको नहीं डांटती हूँ, अगर डांटूंगी तो बच्चे नहीं पढ़ेंगे। तो मैं क्या करती हूँ, बच्चों के साथ जैसे मित्र नहीं होती हूँ, क्योंकि एक अध्यापक अध्यापक ही होना चाहिए, मित्र नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो एक दायरा है नहीं रहेगा। तो लेकिन मैं जैसे कुछ शब्दों का प्रयोग करती हूँ, अगर एक बच्चा चल रहा है मैं कहूँगी बेटा नहीं चलो, हम साथ में तालियां चलेंगे, ये ऐसे बोलते हैं, बाद में साथ में चलेंगे, कुछ कार्यक्रम करेंगे। और जो कक्षा में है मैं केवल नहीं पढ़ाती हूँ, जो हिंदी है केवल इसका अध्ययन नहीं करते हैं लेकिन संस्कृति से जुड़ी बातें भी करते हैं। जैसे सुबह हम लोग प्रार्थना करते हैं, संज्ञा करते हैं, और साथ ही साथ भजन भी करते हैं। और बच्चे कुछ बच्चे केवल भजन करना नहीं चाहते हैं, मैं क्या करती हूँ एक छोटा सा स्पीकर लाती हूँ, और क्योंकि बच्चों को यह पसंद है, तकनीक पसंद है, टेक्नोलॉजी बहुत पसंद है, तो टेक्नोलॉजी के माध्यम से बच्चों को सिखाती हूँ।
1: ज़रूर, तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि आज हमारे साथ एक वरिष्ठ गुरुजी हैं और फिर एक नई पीढ़ी की अध्यापिका हैं, और दोनों में जो तालमेल है भाषा और संस्कृति को लेकर, किस तरह से वर्तमान स्थिति का ख्याल रखते हुए भविष्य का निर्माण किया जा रहा है, एक सुसंस्कृत समाज और देश का निर्माण किया जा रहा है, इसी विषय पर आज की हमारी बातें हैं, संस्कृति की बातें। तो इन बातों को हम थोड़े ही देर में विस्तार के साथ आगे बढ़ाएंगे, फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा विराम, हमारे साथ जुड़े रहिए।